जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जागे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस

मन्ने मगन चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावह मोख द्वार मन्ने परवार है सदा और मन्ने तराए तारे गुरसिख मन्ने नान पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गहमान पंचे सोहे दर

है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, तंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजहा है,

मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा मृद करता दुर्दर्दं अगंग ओघहरता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी

कि राज करहीं है, कि कर्मं करहीं है, कि सर्वं कलि है, कि सर्वं दलि है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौन है, कि सर्वत्र देशा है, कि सर्वत्र भेसा है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र साज है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहु, कि सर्वत्र भाव, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेसा है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र भेखी, कि सर्वत्र भेखी, कि सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र सुख है, कि सर्वत्र भुख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेसा है।

त्रिभुक्त स्वरूप है, अशुद्ध है, अशूत है, कि नरक प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, नोक प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी शन अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिन

भगवती शंतवै प्रसाद। कि जाहर जूर है, कि हाजर हजूर है, हमें सुलो सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुसनुल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राज करीम है, कि रोजी देहांद है, कि राज प्रहिंद है, करीमुल कमाल है, कि हुसनुल जमाल है, कि हुसनुल जमाल है, गरीबुल खिराज है, गरीबुल निवास है, हरीफुल सिकन है, हरासुल फिकन है, कलंक प्रणास समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाय करीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकम प्रणास है, बहिष्टुल निवास है, कि सरबुल गवन है, हमें सुरवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अदीस है, अधे सुला लेख है, हमें सुला पेख है, जिमीनो जमा है, अमी कुल माँ है, गरी करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचरंग प्रकाश है, कि मैं तो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि मैं तो बेपूत है, कि मैं तो पसा है, कि आत्म प्रवाह है, कि अचरंग अनंग है, कि अमित तो अपंग है, मद पहार शांद तुए प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुण गन मुदाम अर भर या गंज हर नर पर पन्न गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर या खंड पर नर या मंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गन प्रणाम जल थल मुदाम अनशजे अंग आसने अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड देश विश अपंड जल थल महा दस विश बेअंत अनुभव अनास त्रत धर तुरास आ जान बाहु कैसदाहु अंकार आद कथनी अनाद खाल खंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम आन शज गात अजना बात चंद गात नरंज बात तन टुट भंडार अंठ अपार अडीठ धर्म मत ढीठ कर्म अणवरण अनंत दाता मात।

सर्वंपर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपासी हैं, सर्वनाशी हैं, करुणा कर हैं, विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं।

नर नायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्पायक हैं, पापंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं।

नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंक नमो आशासे नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

मारे पछा श्री अस्तु जो करियो रछा। राख ले हुए राखन हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जूथी ओ जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल

आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को परमो बद कियो। काट काट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पिशानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला सब

दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र,

माया मोह परम पर भूले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगता।

0: ਗਾਰ ਦਰ ਕਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਦਰਗਹਿ ਝੂਠ ਖੁਆਰ ਰਹਾਉ ਆਪ ਸੁਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲਈ ਸੱਚਾ ਵੱਢ ਕਿਰਸਾਣ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਣ ਨੌ ਨਿਧ ਉਪਜੈ ਨਾਮ ਏਕ ਤ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣ ਨ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਤਿਸ ਚੱਜ ਚਾਰ ਅੰਦਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਚੁੱਕਈ ਮਰ ਜਨਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਚੰਦਨ ਮੋਲ ਨਾਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਬਹੁਕਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਜੇ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਕਾਰ ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੀਏ ਕਿਉ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣੀ
1: ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸੁਣੀ ਦੇ ਡਰਾਵਣੀ ਚਾਚੀਓ ਵਿੱਚੋ ਜਾਏ ਪਾਹੇ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿਉ ਕਾਏ ਪੰਚੈ ਹੁਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰੈ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੂੜੈ ਰਾਮ ਕਹੋ ਜਪੋ ਗੁਣਸਾਰ ਹਮੇ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਮੁੱਠੀ ਅਹੰਕਾਰ ਰਹਾਉ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਲਕਾਰੇ ਲੱਗ ਦੁਬਦਾ ਲਾਗੇ ਪਚਮੁਏ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੈ ਹੋਰ ਮੁੱਠੀ ਧੰਦੈ ਠੱਗ ਮੂਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਿਆ ਗਿਆ ਮੂਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਧੰਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋ ਮੂਈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਮ ਮਰੇ ਨਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਤ ਸੱਚੀ ਕਾਰੈ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸੋ ਨਰ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਨ ਜਲ ਬਲ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨੂਰ ਉਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂਰਪ ਜਾਵੇ ਤੂਰ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਪਰਮਾਈਐ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬੈ ਪੂਰ ਮਨ ਰੇ ਸਬਦ ਤਰੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਤਨ ਸੁੱਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਭੈ ਸੱਚ ਰਾਤੀ ਦੇ ਹੁਰੀ ਜੇ ਵਾ ਸੱਚ ਸੁਆਉ ਸੱਚੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਬੜ ਨਾ ਪਾਵੈ ਤਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸਾਚਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਦ ਰਤੈ ਪਤ ਹੋਏ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚ ਸੰਤੋਖਿਆ ਨਦਰ ਕਰੈ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਪੰਚ ਭੂਤ ਸੱਚ ਪਹਿਰਤੈ ਜੋਤੀ ਪੰਚ ਭੂਤ ਸੱਚ ਪਹਿਰਤੈ ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਵੀ ਸਰੈ ਗੁਰ ਰਾਖੈ ਪਤ ਤਾਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਵਹੀ ਪੂਰ ਪਰੈ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਹਠਮਤੀ ਬੁੱਢੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੋਤਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਆਗੈ ਦੇਖੋ ਡੋ ਜਲੈ ਪਾਸ਼ੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਲਾਵਈ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਤੁਜ ਸਮਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਜਿਉ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੇਓ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮੇਓ ਜਿਨ ਇਹ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਕਰ ਆਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਨਣ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਕੀਚੇ ਸਾਬਾਸ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੈ ਸੱਚੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਬ ਲਗ ਜੋ ਬਨਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮਨਾ ਵਈ ਢਹਿ ਟੇਰੀ ਤਨ ਖੇਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾ ਸਲਾਹੀਐ ਹੋਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਐ ਲਿਖ ਪੜ ਬੁਝੈ ਭਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਨ ਅਗਲੀ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੁ ਅਤੁਲਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਸਾਰ लख सियाणप जी करी लख स्यो प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्रापिया, बिन नावै तूख संताप, हर जप जेड़ै छुटिऐ गुरमुख चीने आप। तन मन गुर पै विचया, मंदी आसर नाल, त्रे भवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतिपाल ही लिखै सास ग्रास। अंतर गुरमुख तू वसै, जो पावै त्यो निरजास, जीरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए संक उतार, मोया चित कर जाइए, तित जे वंदिया मर मार, अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार। अनहद बाणी पाइए, तै होमे होए बिनास, सतगुर सेवे अपना, सतगुर बाणे तास, खड़ दरगै पहनाइए मुख हर नाम निवास। जय देखा तै रब रह, शिव शक्ति का मेल, त्रिहुगुण बंदी देहुरी, जो आया सो जग सो खेल, वे जोगी दुख विछड़ै मन मुख लहे न मेल। मन बैरागी कर वसै, सच पै राता होए, ज्ञान महारस भोग वै बहुत भूख ना होए, नानक ए मन मार मिल पी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला, एहो मनो मूरख लोभिया, लोभै लगा लोभान, शब्द ना पीजै सकता दुरमत आवन जान, साधु सतगुर जी मिलै ता पाइयै गुणी निदान। मन रे होमै छूट गुमान, हर गुर सर्व सेव तू पावै दरगै मान रहाओ। राम नाम जप दिन सरात, गुरमुख हर धन जान, सब सुख हर रस भोगणै संत सभा मिल ज्ञान। नित अहनस हर प्रभ सेवया, सतगुर दिया नाम, कूकर कूड़ कमाइए गुर निंदा पचे पचान, भरमे भूला दुख कणो जम मार करे खुलहान, मनमुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुभान। ऐथै तंद पिटाइए सच लिखत प्रवान, हर सज्जन गुर सेवदा गुर करणी प्रधान, नानक नाम ना विसरै करम सचै निसान। श्री राग महला पहला, एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माहे, क्यों दरगै पत पाइए जा हर ना वसै मन माहे, गुर मिलिए सुख पाइए अगन मरै गुण माहे। मान रे एहन सहार गुण सार, जिन खिन पल नाम न विसरै ते जन विरलै संसार रहाओ। ज्योति ज्योत मिलाइए सुरती सुरत संजोग, हिंसा होमै गत गए नाहीं सहसा सोग, गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मिलै गुर संजोग। काया कामण जे करी भोगै भोगण हार, तिस सिहो निहो न की जई जो दिसै चलण हार, गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अगन निवार मर, गुरमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए, नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगै जाए। श्री राग महला पहला, हर हर जपो प्यारिया, गुरमत ले हर बोल, मन सच कसवटी लाइयै तुलियै पूरै तोल, कीमत किने ना पाइयै रिद मानक मोल अमोल। पाई रे हर हीरा गुर माहे, सतसंगत सतगुर पाइयै अहनस शब्द सलाहे रहाओ। सच वखर धन रास लै पाइए गुर प्रसाद बरगास, जो अगन मरे चल पाइए त्यो तृष्णा दास दास, जम जंदार ना लग गई यो पौजल तरे तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रतै सच पाई, सख्त सच ना पावई कूड़े कूड़ी पाए, सच रतै गुर मिलिए सच्चे सच समाए। मन में माणक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाइए दया करै हर हीर। श्री राग महला पहला, पर मैं पाहे न विजवै जे पवे दसंतर देस, अंतर मैल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस, होर कितै भगत ना होवै बिन सतगुर के उपदेस। मन रे गुरमुख गन निवार, गुर का कहया मन वसै हो मैं तृष्णा मार रहाऊ। मन माणक निर्मूल है राम नाम पत पाए, मिल सत्संगत हर पाइय गुरमुख हर लिव लाए। आप गया सुख पाया मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चित्यो सो गण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख ना भेट्यो सो भौजल पचे पचाए, इह माणक जियो निर्मूल है यो कोडी बदलै जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे प्रधान, गुर मिल भौजल लंघिया दरगह पत प्रवान। नानक ते मुख उजलै धुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त वसाही है जैसी निभै नाल। अगै साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो सौ देखै पति आए रहाओ। जिन्ना रास न सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणन जियै मन तन खोटा होए। फाही फाते मिर्ग ज्यों दुख घणो नित रोए, खोटै पुतै ना पवै तिन हर गुर दर्शना होए। खोटै जात ना पत है खोट नसी जस कोए, खोटै खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाइए गुर के शब्द सलाहा, राम नाम रंग रतियां पार ना परम तिनाहा। हर जपलाहा गला निरपौ हर मन माहा, श्री राग महला पहला। घर दूजा धन जोबन अर फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चार। पपन केरै पत ज्यों ढाल टुल जुम्मन हार, रंग माण लै प्यारे आ जा जोबन नौ होला। दिन थोड़ै थकै पया पुराना चोला रहाओ। सज्जन मेरै रंग लै जाए सुतै जीराण, हम भी वंजा डुमणी रोवां चीणी बाण। की ना सुने ही गोरी है अपन कन्नी सोए, लगी आवै साहुरै नित ना पीए होए। नानक सुती पेई जान वरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन। श्री राग महला पहला, घर दूजा दूजा। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार। आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार, रंग रता मेरा साहिब रव रहया भरपूर रहाओ। आपे माशी मछली आपे पानी जाल, आपे जाल मन कड़ा आपे अंदर लाल। आपे बौ बिदरंगला सखिए मेरा लाल, नित्रवै सुहागणी देख हमारा हाल। प्राण वै नानक बेनती तू सरवर तू हंस, कौल तू है कविया तू है आपे वेख विगस। श्री राग महला पहला, घर तीजा। एहो तन धरती बीज कर्मा करो सलल अपाओ सारंग पाणी, मन किसान हर हृदय जमाए लै यो पाव स्पद निर्बाणी। काहे गर्भ समूड़े आया पित सुतो सगल कालत्र, माता तेरे होए ना अंत सखाया रहाओ। बिखै बेकार दुष्ट किरखा करै, इन तज आत्मै होए त्याई। जप तप संजम होए जब राखै, कमल बिकसै मद आश्रम आई। बीस सप्ताह रो बास रो संग्रह, तीन खोड़ा नित काल सार। दस अठार मैं अपरम प्रोचीन, कह नानक इव एक तार। श्री राग महला पहला, घर तीजा। अमल कर धरती बीज शब्दो कर, सच की आप नित देह पाणी। होय किसान ईमान जमाय ले पिस्त दो चक मूड़ इव जानी। मत जान सह गली पाया माल कै माने, रूप की सुबा इत विधि जन्म गवाया रहाओ। ऐब तन चिकड़ो इह मन मीडको, कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित भाख्या बोलै क्यों बुझै जानह बुझाई। आखण सुनना पौन की बाणी ए मन रत्ता माया, खसम की नदर तिले पिसंद जिन्नी करे इक त्याया। तेह कर रखै पंज कर साथी नाउ सतान मत कट जाई। नानक आखै राहे पै चलना माल धन कितकू संजयाही। श्री राग महला पहला, घर चौथा। सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आप खाक जिन बंद रहाई धन सिरजन हारो मरना मुला मरना पी करतारो डरना रहाओ ता तू मुला ता तू काजी जाने नाम खुदाई जे बो तेरा पड़िया होवे को रहे ना भरिय पाई सोई काजी जिन आप तजया एक नाम किया आधारो है पी होसी जाए ना जासी सच्चा सिरजन हारो पंज वक्त निवाज गुजारे पड़े कुता एक तेब कुराना नानक आखे गोरसते रहो पीना खाना श्री राग महला पहला घर चौथा एक स्वान दो स्वानी नाल पलकै पौकै सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मुरदार धनक रूप रहा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहाओ मुख निंदा आखां दिन रात पर घर जो ही नीच सनात काम क्रोध तन वसे चंडाल धन क्रूप रहा करतार फाही सुरत मलुकी वेस हो ठगवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा बहुता पार धन क्रूप रहा करतार श्री राग महला पहला घर चौथा एका सुरत जिते है जी सुरत विहूणा कोई ना की जेही सुरत तिहा तिन राहो लिखा इको आवो जाहो काहे जी करे चतुराई लेवै देवै ढिल ना पाई रहाओ तेरे जी जिया का तो है कित को साहिब आवै रोह है जे तू साहिब आवै रोह ओ तेरा ओ तू ना का तेरे ओह असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल तू नदरी अंदर तोले तोल जै करनी तै पूरी मत करनी बाजों कटै घट प्राणवित नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणै बूझै सोए गुरप्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगै परवान श्री राग महला पहला घर चौथा तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहां जय जय देखा तह तह तू है तुझते निकसी फूट मरा ना जाना मेओ ना जाना चाली जा दुख लागै ता तुझे संभाली रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर जो किश करी सो तेरे हदूर तू देखै हो मुकर पाओ तेरे कम ना तेरे नाए जिता दे तिता हो खाओ ब्यादर नाही कह दर जाओ नानक एक कहे अरदास जियो पिंड सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज मैनो आपे वेखै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस भावे नानका हुक्म सोई परवानो श्री राग महला पहला घर चौथा कीता कहां करे मनमान देवन हारे कै हथ दान भावें दे न दे सोए कीते के कहिए क्या होए आपे सच भावे ते सच अंधा कच्चा कच ने कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेही धात तिहा तिन नाओ फुल पाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंध कच्चा विचराच अतमत अलूणी फिक्का साध नानक आणे आवै रास विण नावै नाही साबास श्री राग महला पहला घर पंजवां अशल शलाई नह शलै न काउ कटारा कर सकै ज्यो साहिब राखै त्यो रहै इस लोभी का जियो टल पर
2: जानी बाज गुरु गोबार अस्तर करता देखिए ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਧੰਦੀ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗੋਰਾ ਕੇ ਸੇ ਉਭਰੈ ਸਾਚੇ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕ ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗਈ ਸੱਚ ਕਰ ਜਿਸੇ ਉਤਾਗ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਜ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸਾਖ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ ਹਉਮੈ ਤਰਸਨਾ ਮਾਰ ਕੈ ਸਜ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਲਹਾਇ ਇਕ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਵਕਰ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਸ ਸਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਤ ਗੁਰ ਦੀਆ ਦੇਖਾਏ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਸਲਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸ ਗਾਹੋ ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਵੇ ਸਾਹ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ ਕਾਰਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੋ ਭਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰਜਾਣੋ ਕਾਲ ਜਿਉਂ ਮਛੀ ਤਿਉਂ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਰਹਾਓ ਸਭ ਜਗ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ ਸੱਚ ਰਤੇ ਸਿ ਉਭਰੈ ਦੁਬਦਾ ਛੋਟ ਵਿਕਾਰ ਆਓ ਤਿਨ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਦਰ ਸੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਸੀ ਚਾਨੈ ਜਿਉਂ ਪੰਖੀਆਂ

0: परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चावर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जागदी जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश कीती है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का सुमेल होने जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूर नेड़े आए हुए सारे पतवंते सज्जणा का तहे दिलों धन्नवाद अते निघा जी होया कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू हु केम ऑल द वे टू ब्लेस दिस ब्यूटीफुल कपल इज नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। Thank you so much, everybody, for coming here, for being here today, as you witness two souls being one in the presence of our eternal Guru. Sat Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai, apne jo niji vichar ne, gallan baatan ne, kripa karke unhan nu sankochan di kripalta karo, chup da daan bakhshish karo. Apni surat, apna dhyan, shabd de vich jodan da yatan karna hai. जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है उत्थे ही अपनी झोलियां विच असी सतगुरां पासों खुशियां ते खेड़े दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी पढ़दी आउंदी है जो बाणी कंठ है वह भी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी जपन जोत सिंह मांगट सपुत्र सरदार जगदीप सिंह जी मांगट और माता जी भगवंत कौर मांगट परिवार जलंधर पंजाब तो बिलोंग करता है और इस वक्त परिवार सरी बीसी का निवासी है। जपन जोत सिंह के दादा जी का नाम सरदार मोहिंदर सिंह जी मांगट इन्हों दादी जी माता अमरजीत कौर मांगट हैं। इन्हों नाना जी सरदार सूरत सिंह जी संधु नानी जी का नाम माता सरबजीत कौर संधु है। एसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी सिमरनजोत कौर सपुत्री सरदार गुरविंदर सिंह जी और माता जी अमनप्रीत कौर परिवार जलंधर पंजाब तो ही बिलोंग करता है। इस वक्त यह परिवार भी सरी बीसी का ही निवासी है। सिमरनजोत कौर के दादा जी सरदार गुरचरण सिंह जी और दादी जी का नाम माता कुलदीप कौर है। इन्हों नाना जी सरदार हरनूप सिंह जी और नानी जी माता सतवंत कौर हैं। सो एसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप में जानकारी हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी जपन जोत सिंह सिमरनजोत कौर इन्हों जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो करके हाजिरी लवाउणगे। बाकी साध संगत के चरणों में बेनती है अपने अपने स्थानों पर कृपा करके सजे रहो। समग्रास्क जपन जोत सिमरनजोत कौर एंड द पेरेंट्स वेयर एवर दे सिटिंग प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। जिथे जिथे बैठे हो अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के सावधान हो जान। अरदास ही सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब सुख सागर उपरंत सतग्रंथ मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी ने सरवण कराउणगे। आओ प्रेम सत हाजरी लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: I'm going to go to the house. ਦੇ ਖਾ ਲੈ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਭਜੋ ਹੋਰ ਜੁਗੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗੈ ਜੁਗੋ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਲਨ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਰਮ ਜਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਬਿਨ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਖ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੇ ਸਰਨ ਕਮਲ ਕਾਰ ਬੋਹਿਤ ਕਰਤੇ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਆਜਵਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ
1: ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਹਰ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਲੱਦੇ ਕੇ ਪਸਵਲੀ
2: ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ
1: ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਦਰ ਨ ਚਲ ਮਲੀ
2: ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ
1: ਤਹਿ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ
2: ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੋਹੇ ਲੜੇ ਥੀਏ
1: ਜਮਦੂਤਾ ਕਾਚੁ ਨਾ ਚਲੀ
2: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
1: ਨਾਨਕ ਜਗਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਰ ਲਦੇ ਖੀਪ ਜਬਲੀ

हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया, अनुदिन हर ले

रह ना कोई, बिच होमे कार दुख रोई, को नानक किन विदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानण संसार, गुरमुख कोई उतरे पार, जिसनु नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगता ते सै सारिया, जोड़ कदे ना आया, करता आपे भुल है ना भुले किसे दा भुलाया। भगत आपे मेलियन जिनी सचो सच कमाया, सह सारी आप खुआयन जिनी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस विधाया, भगत करन हर चाकरी जिनी अन दिन नाम ते आया। दासन दास होए के जिनी बिचो आप गवाया, ओना खासमा के दर मुख उजले सच्चे शब्द सुहाया। सलोक महला पहला, सवाही सलाह जिनी ते आया एक मन, सेई पूरे सा वक्ते उपर लड़ मुए, दूजे बहुते रा मन किया मती खिंडिया। बहुत पै असगाह, खोते गोते खाए न निकले, तीजे मुहि ग्राह भूख ते खा दुए पौकिया। खादा होए सुआ पी खाने स्यो दोस्ती, चौथे आई ऊंग अखी मीट पिए पार गया। पी उठ रचियोन वाद से बरिया की पेड़ वदी, सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए, नानक साहिब मन वसे सच्चा नावन होए। महला दूजा, सेई पूरे सा जिनी पूरा पाया, अठी बेपरवार हन एक ते रंग, दर्शन रूप यथा विरले पाइए, कर्म पूरे पूरा गुरु पूरा जाका बोल, नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी, जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाइए, मुठी तंदे चोर महल ना पाइए, इन्ने चित कठोर सेव गवाइए, चित कट सच न पाए सो भन कड़ाइए, क्यों कर पूरे वट तोल तोलाइए, कोई ना आखे कट होमे जाइए, लइयन खरे परख दर बिनाइए, सौदा एक तहट पूरे गुर पाइए। सलोक महला दूजा, अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर, तिस विच नौ निद नाम एक पाले एक गुणी गहीर, कर्म बंती सलाहिया नानक कर गुरपीर, चौथे पहर सवा के सुरतिया उपजे चाओ, तिना दरियावा स्यो दोस्ती मनमुख सच्चा नाओ, उत्थे अमृत बंडिए कर्मी होए पसाओ, कंचन काया कसिए बन्नी चढ़े चढ़ाओ, जे होवे नदर सराफ की बौहड़ ना पाई ताओ, सत्ती पहरी सत भला बहिए पड़िया पास, उत्थे पाप पुन विचारिए कूड़े कट्टे रास, उत्थे खोटे सटिए खरे कीचे सावास, बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास। महला दूजा, पौन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पौड़ी, सच्चा भोजन पाओ सतगुर दसिया, सच्चे ही पत्याए सच विगसिया, सच्चे कोठ गराए निज कर वसिया।